सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ट्ज।

कहाँ बात करते तू इतो दसैं हो नचना गैना रमैना हो अपन कला संस्कृति बजैना हो हमरे उधर के जाप कले से हमार भैया बाबू के का सीखे हमरे एक अर्क माया करते मजा ले भोज करके जाप ना उधर ना का अब चाहना

प्रधान
अशोक कुमार चौधरी 1298, अमित सुनार, अमित यो म पछि उम्मेद्वारसँग पनि परामर्श गर्छु यसको बारेमा। अमित कुमार सुनारले प्राप्त गर्नुभएछ 572, निशा डाँगी 2099, इन्दिरा राणा मगर 2047, उत्तम प्रसाद पौडेल 614, राम प्रसाद पोखरेल 531, विमल तामाङ 563, सुजित कुमार श्रेष्ठ 424, प्रकृति ढकाल 1518, प्रदीप विष्ट 1043, गोपी कृष्ण चौलागाई 390, रहबर अन्सारी 1025, नन्दन यादव 757, रामचन्द्र खत्री 385, कृष्ण कुमार कार्की 523, आशिष जुरेल 799, रमेश प्रसाई 2123, कृष्णदेव शाह 368, समीक्षा पासकोटा 1799, इन्द्र बहादुर कुवर 366, एम प्रसाद श्रेष्ठ 553, अरिको कुमार पाण्डे 912, राममणि रायमाली 454, स्मृति सेन्चुरी 813, धनञ्जय रेग्मी 890, गिरिप्रसाद पन्थी 365, समिन्ना मिया 1051, वीरेन्द्र कुमार कोवार 378, लक्ष्मी तिवारी 791, पुनम कुमारी अग्रवाल 902, तोसीमा काशी 2257, हेमन्त राज बराल 559, खिमा निक 957, विराट भक्त श्रेष्ठ 2094, अमृता विक 940, सस्मित पोखरेल 1833, जितेन्द्र चिसी 342, निशा श्रेष्ठ 1252, आशिका तामाङ 1403, अर्जुन भानिया 554, कृष्णमान श्रेष्ठ 785, शारदा पुरादी 950, ऋषिधन गुरुङ राई 525, सबिना विक 1011, शिवशङ्कर यादव 596, सुरेश डङ्गोल 551, कृष्णप्रसाद खरेल 559, हेमन्त कुमार चौहान 371, रामसिंह 692, सेवगम 536, गजला प्रमेन मित्रानी 499, कोशिश कोइराला 784, 388, राजन कुमार दाहाल 572, मिङमा डन्डु शेर्पा 825, सुरेन्द्र चौधरी 725, विमल कुमार तिवारी 517, रोहित प्रसाद नेपाली 448, अशोक खड्का तोकी 467, शेख बहादुर गुण 422, प्रकाश चन्द्र परियार 948, लक्ष्मण राज चितौला 415, अप्सना भानु 655, घनश्याम विष्ट 648, गीता चौधरी 1516, गणेश कार्की 1693, प्रवीण कारक 310, इन्द्र रोकया डोल्पो 494, पवन कडेल 587, बोधराज रेग्मी 665, साजन विक 876, अनुप नेपाल 506, मोरदेव राई मिलन कान्छा 358, आगन दास चौधरी 410, आशा झा 845, प्रकाश सुवेदी 750, राजीव खती